0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट विटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी बिहान

0: वायरनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट दो 2700 में खरीद कर सोई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट वायरनेट अब सब कनेक्टेड
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रेसिङ टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784594 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

राम राम संजेक पाँच बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। लमही नगरपालिका हन पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना पालिका घोषणा करगिल बा। पाँच वर्ष छिटी बालबालिका हन नियमित खोप सेवाको पहुँचमा पुगिना खोप छुटगिल बालबालिकाको पहिचान कैकन खोप सुनिश्चित करल पाछा आज कार्यक्रमको आयोजना कैकन लमही नगरपालिका हन पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा करगिल हो। लमही नगरपालिकासे आज चालू आर्थिक वर्षमा 4091 जना बालबालिका हन खोप लगिन लक्ष्य धरल रह। उ मध्ये 3660 जना बालबालिकाको घर भ्याट मार्फत खोप लगाइदिलक वा निलगिलक अवस्थाबारे सुनिश्चितता करगिलक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण शर्मा जानकारी दिइरहल। नगरपालिकासे स्वास्थ्य क्षेत्र हन प्राथमिकतामा धरती समुदाय स्तरमा नियमित खोप अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन करलक व आवश्यक सूचक हुँग्र पूरा हुइलक आधारमा पालिका हन पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना पालिका घोषणा करगिल बाकलसले लमही नगरपालिकासे 1109 नम्बर ओडा हन पूर्ण खोप सुनिश्चितता ओडा प्रमाण पत्र प्रदान करगिलक स्वास्थ्य शाखा जना राखल। कार्यक्रममा बोल्ती बरपहुना जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा छे पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा केवल औपचारिकता केल निहोकन बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षा से जोरगिलक कन विषय हुइलक हुन्छ। खोप कार्यक्रमको बाल मृत्यु दर घटैना ओ विभिन्न रोग से बालबालिका हान सुरक्षित धर भारी भूमिका खेलक बटुवा राखल। लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरी से लमही नगरपालिका से स्वास्थ्य शिक्षा व सामाजिक विकासको क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिती अहिलेका पालिका से दुर्गम बस्तीको बालबालिकासम्म खोप सेवा पुगेकला विशेष अभियान सञ्चालन गर्लक जानकारी दिइराखल। कार्यक्रममा उपप्रमुख लक्ष्मी योगी लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसी लमही नगरपालिकाका वडा नम्बर 3 वडा अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी वडा नम्बर 5 वडा अध्यक्ष ओम प्रसाद सुवेदी वडा नम्बर 6 वडा अध्यक्ष श्याम नारायण चौधरी लगायतको उपस्थिति रहल रह। वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ निरीक्षक मीना शर्मा भूषालको स्वागत मन्तव्य रलक कार्यक्रमको सञ्चालन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण प्रसाद शर्मा र करल रह। दाङको स्थानीय तहमा बेरुजुक चाङ लागल बा। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लेखा परीक्षण से 10 ठोजो पालिकामा 16,13,94,57,000 रूपियाँ लेखा परीक्षण गराबेर 36,40,79,000 रूपियाँ बेरुजु देखिल बा। आर्थिक पारदर्शिता निहुबर दाङमा स्थानीय तहमा हरेक वर्ष बेरुजु थप्दी गइरहल। विगत 4 वर्षको अन्तरालमा हरेक वर्ष करोडौं बेरुजु थप हुइतिरलक। महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन से हरेक वर्ष औले राखल। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लेखा परीक्षण से 10 ठोजो पालिकामा 19,05,54,94,000 रूपियाँ का लेखा परीक्षण गराबेर 27,97,60,000 रूपियाँ बेरुजु देखिल रह। महालेखा निरीक्षक 61 प्रतिवेदनका आर्थिक वर्ष 2079-80 10 ठोजो पालिकामा 21,06,77,34,000 रूपियाँ का लेखा परीक्षण गराबेर 63,61,37,000 रूपियाँ बेरुजु देखिल रह। महालेखा परीक्षकको 60 प्रतिवेदन से फे आर्थिक वर्ष 2078-79 पाछाको 2 वर्ष यहाँ फे धुर बेरुजु खेल रह। दाङको 10 ठोजो पालिकामा 19,29,07,11,000 रूपियाँ का लेखा परीक्षण गराबेर ऊ वर्ष 72,97,39,000 रूपियाँ बेरुजु महाशाखा महालेखा से 60 प्रतिवेदनमा देखाइल रह। राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालय तुलसीपुर और निर्णय पुनर्स्थापना केन्द्र गोराईको संयुक्त आयोजनामा मानसिक समस्या व्यवस्थापन सम्बन्धी 2 दिने योग तथा ध्यान शिविर सम्पन्न हो रहल। सोमबार और मंगलबार संचालन हुइलक शिविरमा पुनर्स्थापना केन्द्रमा उपचाररत पूर्व दुर्व्यसनी तथा उपचार श्रीहरू कनकला मानसिक रूपमा बलगर बनिना समाजमा पुनर्स्थापना गर सहयोग पुगिना तथा क्षमता विकास गर्न उद्देश्य धर्गिलक संस्थाको कार्यालय प्रमुख गणेश ओली जानकारी दिइराखल। कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख टीबी गुरूङसे मानसिक समस्या व्यवस्थापनको विषयमा प्रशिक्षण दिइल रह। वस्तुक राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालय तुलसीपुरका प्रमुख डाक्टर मदन कुमार विशेषले जीवनशैली ओ स्वास्थ्य आहार विहारका बारेमा प्रशिक्षण दिइराखल। वस्तुक मोटिभेटर स्पीकर विनोद केसी तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका शाखा अधिकृत सरोज भण्डारीले सकारात्मक चिन्तन सोच ओ व्यवहारको विषयमा सहभागी हुनका प्रशिक्षण दिइल रह। योग प्रशिक्षक निमानन्द रिजाल ओ अन्जु रेग्मी निपानेसे योग तथा ध्यान अभ्यास गराइल रह। कार्यक्रम संस्थाका उपाध्यक्ष विष्णु ओलीको अध्यक्षता तथा स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख टीबी गुरूङको बरपहुनामा हुइल रह। शताब्दी आयुर्वेद चिकित्सालय तुलसीपुरका प्रमुख डाक्टर मदन कुमार विश्वको
स्वागत मन्तव्यसे शुरू हुलो कार्यक्रमको सञ्चालन निर्णय पुनर्स्थापना केन्द्रको कार्यालय प्रमुख गणेश ओली करल रह। राष्ट्रको राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङसे भूमिहीन सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारसे मचैलक डोजर आतंक बन्द कर माकर्ती जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझा राख्ल। सर्वोच्च अदालतले तत्कालको लागि डोजर चलिना बात रोक्लसेफे नागरिकमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुइतिरल को भूमिहीन सुकुम्बासी बस्तीका नागरिक मजासे निनाई निषेकल कति तत्काल यी काम हनरवाक माकर्ती राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङसे ज्ञापन पत्र बुझिलक हो। दाङका प्रमुख जिल्लाधिकारी विश्व प्रकाश अर्याल हन ज्ञापन पत्र बुझिते एकतर्फ से प्राकृतिक विपत्ति व औरह राज्य से जो बस्ती से धपिना हो कलसे निम्न आय स्तर हुलक नागरिक हुकनक धीर जो विचल्य हुना बात निश्चित बा। राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका अध्यक्ष गणेश आचार्य से हस्ताक्षरित विज्ञापन पत्रमा कगिल्वा। राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङ जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्यको नेतृत्वमा पुगलक प्रतिनिधिमण्डलका बुझागिला ज्ञापन पत्र बुझ्दै दाङका प्रमुख जिल्लाधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालसे यी विषय महत्वपूर्ण रहलको केन्द्र सरकार फे यी विषय हन सम्बोधन कैकन आशा करलक उहाँ बटुवा रखल। हुइठा त आजु थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल सन्ध्याफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखसक खबरमा से समाचार कक्षक सबको संग्रहणसँग वैशालिक राम चौधरी विदा हिटु रिरी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज जो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोई कसैलाई रोग लागे गोर्खा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिशियन, हाड़ जोड़नी, नसा, प्रसूति, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, बाल रोग, थायराइड, प्रेशर, सुगर, छाती, मुटू, नाक, कान, घाटी, टाउको, गैस्ट्रिक अल्सर, फिजियोथेरापी, दूरबीन विधिबाट ऑपरेशन लगायत स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण

0: यति बेला बेलुकीको 7 बजेको छ।
1: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छाना मुनि।
2: वरिष्ठ हार्ट जोड्ने तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा।
3: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
2: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हार्ट जोड्ने सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
4: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू:
5: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा।
6: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा।
7: नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा।
8: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा।
9: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा।
10: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
11: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
1: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई जाँच। फोन नम्बर 082563218।

0: वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट को 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सबै कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम चाँग च्याक यति बेला रात्रि को 9 बजे को छ।